अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: ला भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की
1: श्री कौशल्यानंद भगवान की
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की श्री केकई नंदन भगवान की श्री सुमित्रानंदन भगवान की श्री चारो भैयन की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम जन्म भूमि की श्री कृष्ण जन्म भूमि की श्री काशी विश्वनाथ की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की जगत गुरु स्वामी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

श्री मद भगवद गीता वह दिव्य एवं पावन संदेश है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव प्रजाति को दिया है। परम प्रभु स्वयं कहते हैं कि गीता उत्तम सार है, मेरा श्रेष्ठ निधान है। गीता ही अति उग्र मेरा और अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा परम रहस्य है, मेरा गुरु महान है। परम पद ये पार्थ मेरा हृदय है, प्राण है। इस पवित्र शास्त्र के रचनाकार गुरुवर व्यास देव के शब्दों में गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिश्रता, अर्थात कर्तव्य हो गीता सुवाचन अनर्थ शास्त्र विस्तार है, पद्मनाभ के मुख कमल से उदित ये उद्गार है। आइए इस दिव्य संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि को अपने मन मंदिर में सजोएं।

गीता न तो महज दार्शनिक एवं विद्व चर्चा का विषय है और न ही मात्र जीवन निवृत्ति अथवा मोक्ष का उत्तम साधन, अपितु यह एक सुखमय जीवन जीने की अद्भुत कला है। इट हैज बीन राइटली सेड दैट गीता इज नॉट अ रिटायरमेंट प्लान बट इट इज द एसेंशियल डायनामिक्स ऑफ द लाइफ। द डीप रूटेड फिलोसफी इन ईच वर्ड ऑफ दिस ग्रेट स्क्रिप्चर गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ रेयर डिवाइन नॉलेज एंड विजडम रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी prosperous and contented life. In spite of repeated readings and analysis, Gita always remains eternally fresh and educative. आधुनिक युग के महर्षियों ने, आचार्यों ने कर्म

योगियों ने, क्रांतिकारियों ने, समाजशास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने व वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया है। संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकमान्य तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी प्रभुपाद एवं स्वामी राम सुखदास जैसे महान व्यक्तियों ने इस संदेश को न केवल अपनी जीवन शैली बनाया अपितु उत्कृष्ट शब्दों में अपने उद्गार भी जग जाहिर किए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं निराशाओं से घिरा होता हूँ तो मैं गीता को उलटता पलटता हूँ और मुझे धैर्य दिलाने वाला कोई न कोई श्लोक अवश्य मिल जाता है। आचार्य विनोबा लिखते हैं,

अर्थात मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे अधिक मेरी बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। महामना पंडित मालवीय के विचार हैं कि इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतने सारे उच्च गंभीर तथा सात्विक विचार भरे हैं कि वे एक साधारण मनुष्य को भी निम्न से निम्न दशा से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। आइए इस पवित्र पावन संदेश का सरल भाषा में सरस संगीत के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। यह सकल शास्त्रों की स्वामिनी है, समस्त श्रुतियों की रानी है, वह स्वयं श्री हरि मुख से निकली मधुर वाणी है।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय एक अर्जुन विषाद योग। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उनके अनुचर संजय को गुरुवर व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। धृतराष्ट्र संजय से दूर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के लिए उत्सुक विशाल कौरव व पांडव सैन्य दलों का हाल पूछते हैं। संजय महान वीर व पराक्रमी योद्धाओं से युक्त दोनों सेनाओं की सैन्य व्यवस्था के बारे में बतलाते हैं।

कुरु सेना के प्रधान पितामह भीष्म अपने शंख से सिंहनाद से गर्जना करते हैं। प्रत्युत्तर में पांडव सेना के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ऋषिकेश के पंचजन्य एवं धनंजय के देवदत्त शंख की अत्यंत दिव्य तथा गगनभेदी ध्वनि से वातावरण में कोलाहल हो उठता है।

हे राजन, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उसके रथ को बीच सेनाओं के खड़ा करते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सभी स्वजनों, प्रियजनों एवं आचार्यों को देखकर ऋषिकेश से कहता है,

व्याकुल व मोहग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष राज्य भोग के लिए स्वजन व गुरुवध को पाप योग्य एवं असंगत कार्य बतलाते हुए विभिन्न तर्कों के साथ युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह धनुष बाण एक ओर रखकर अपने रथासन पर बैठ जाता है।

बहती आ रही है ताम्रपर्णी और युग युग तक बहती रहेगी। ये ताम्रपर्णी के बारे में लिखा गया साहित्य भले ही मच जाए, ताम्रपर्णी बहती रहेगी ताम्रपर्णी।

कर्मी की यश गाथा गाते हुए कवि कुमरा गुरुपरल जैसे सरिता के रूप गुण पर विमोहित हो उठते हैं, तभी तो ताम्रपर्णी की जलधारा की विशेषताओं का गौरव गान करते हुए वे पौराणिक गाथाओं की ओर भी संकेत करते हैं। वास्तव में तमिल साहित्य संस्कृति में ताम्रपर्णी का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि भारती, कुमरा गुरुपर स्वामीगल, मुत्तुपाटन और महाकवि कंबन जैसे तमिल के ख्यात कवियों ने ताम्रपर्णी की यशगाथा को अपने काव्य में व्यक्त किया है।

0: संस्कृति में नदियों को बहुत महत्व मिला है, क्योंकि सभ्यता के विकास में इनका अन्यतम स्थान रहा है। इसीलिए अधिकांश नदियों की महिमा मंडित कथाएं पुराणों में मिल जाती हैं। गंगा यमुना, कृष्णा कावेरी, नर्मदा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र सोन आदि नदियों की तरह भारतीय प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिण की नदी ताम्रपर्णी के उद्भव की गाथा भी पुराणों में उपलब्ध है।
1: कथा है शिव विवाह का समारोह संपन्न।

0: साथ कमंडल दिया और साथ ही अविलंब दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया।
1: तो क्या अगस्त्य ऋषि सूर्य विवाह देखे बिना ही दक्षिण की ओर चले गए?
0: हाँ, उन्हें जन कल्याण हित यात्रा करनी थी, इसलिए महादेव शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप हमारे विवाह को कोदिदैव गिरी से ही देख सकेंगे। ऐसा वरदान पाकर अगस्त्य ऋषि कमंडल उठाकर दक्षिण की ओर चले गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: दक्षिण क्षेत्र में पहुंचकर कमंडल रखकर थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। सहसा कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा आया, उसके बैठते ही कमंडल लुढ़क गया और उसका आधा जल बाहर आ गिरा, जो धारा बनकर आगे प्रवाहित हो गया। कहते हैं कि उसी पवित्र प्रवाह से दक्षिण की गंगा कावेरी

0: लेकिन आप तो ताम्रपर्णी के उद्भव की कथा सुना रहे थे।
1: हाँ भाई, अब आगे की कथा सुनो, तभी पूरी बात समझ में आएगी ना। अपने कमंडल में बचा हुआ जल लेकर अगस्त्य मुनि कोज जयगिरी पहुंचे। वरदान के अनुसार वहां पर वर वधु के रूप में उन्हें शिव पार्वती के दर्शन प्राप्त हुए। शिव जी के आदेश से अगस्त्य ऋषि ने कमंडलू का शेष जल प्रवाहित कर दिया, जो कोरणय नदी के रूप में तेज जलधारा बनकर बहने लगा। यह कोरणय नदी ही ताम्रपर्णी के रूप में युग युगों से बहती चली आ रही है। कहते हैं जिस प्रदेश से कोरणय नदी बहती है, कभी उसी क्षेत्र को कोरणय नाद कहा करते थे। लगभग 7,000 वर्ग मील में फैले क्षेत्र को कोरणय स्थल कहा गया है। ये लगभग त्रिकोण आकार का है।
2: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला और केरल के दक्षिणी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में

0: है एक पोदिगल पहाड़।
1: ताम्रपर्णी का उद्भव इसी पोदिगल गिरी से हुआ है। पोदिगल से 1837 मीटर ऊंची अगस्तियर गिरी के शिखर दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। वास्तव में तानपूर्णय यानी ताम्रपर्णी अगस्तियर पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सितंबर नार जिला बनने से पहले ताम्रपर्णी एक ही जिले में बहकर सागर में मिल जाती थी।
0: वास्तव में पोदिगल पहाड़ में पूर्णय नदी की जलधारा दो भागों में बट जाती है। एक का नाम अन्नपूर्णय यानी पुरुष पूर्णय और दूसरे का नाम तन्नपूर्णय यानी नारी पूर्णय है। अन्नपूर्णय केरल से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है और तन्नपूर्णय बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर सागर जल में विलीन हो जाती है। मूलतः तमिल भाषा का तन्नपूर्णय शब्द ही कालक्रम में बदलकर ताम्रपर्णी

पठारी भाग में बहने वाली सरिता ताम्रपर्णी के नाम के बारे में एक और प्रसिद्धि है। इस नदी के उद्भव स्थल पर चंदन के वृक्षों के झुरमुट हैं। इनके पत्ते नदी जल में गिरते हैं, जिनका रंग तामरय यानी कमल के फूल की तरह हो जाता है। इसीलिए इस सरिता को ताम्रपर्णी कहते हैं। कुछ विद्वानों का विचार अलग है। उनके अनुसार ताम्रपर्णी नदी की रेत में तांबे के कण पाए जाते हैं, फलस्वरूप तांबा या ताम्रयुक्त होने के कारण इसका नाम ताम्रवर्णी या ताम्र

0: पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में आने पर इसकी धारा की तीव्रता समय समय कम होने लगती है। अब दोनों ओर से दो अल्हर सहेलियों की भांति दो सहायिकाएं पेयार और चित्तार ताम्रपर्णी की मुख्य धारा में आकर मिलती हैं।
1: वेगवती होती हुई ताम्रपर्णी नदी की धारा उछलती कूदती आगे बढ़ जाती है वानतीर्थम पहुंचने के लिए।
2: ये वानतीर्थम क्या है और कहाँ पर स्थित है?
1: पर्वत मालाओं से उतरकर ताम्रपर्णी की धारा पठारी भाग में बहती हुई विशाल जलप्रपात बनाती है, उसी को वानतीर्थम कहते हैं।
0: ताम्रपर्णी की जलधारा वानतीर्थम में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। चट्टानों पर गिरते ही इसकी जल राशि छिन्न भिन्न होकर फैल जाती है। फेनिल जल और उस पर फुहारों से बना कोहरा लगता है जैसे निरभ्य आकाश से बादलों सहित झुक आया हो। यही स्थल है वानतीर्थम, अर्थात जिस तीर्थ पर आकाश उतर आया हो।

0: नदी पर वानतीर्थम से आगे सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीलकंठन कसम भी है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम कहा जाता है।
1: हाँ, नीलकंठन कसम केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, ताम्रपर्णी नदी के पास बने सरोवर के साथ ये एक ऐतिहासिक स्थान भी है।
2: ऐसी कथा है कि जहाँ पर ताम्रपर्णी से उसकी सहायता काराय नदी मिलती है, वहाँ पर पांड्य राजाओं का बनाया हुआ एक छोटा सा दुर्ग था। जब दक्षिण में नवाबों के साथ युद्ध होता था तो पांड्य राजा इसी किले में शरण लेते थे।
1: इस किले के बारे में रोचक जानकारी इस लक्ष्मण दे रहे
3: हैं। சுத்தி பார்த்த வரவே சகல இடத்துல இருந்தும் ஆளுகள் எல்லா இடத்துலயும் வராங்க.
2: நீலகண்டன் கசம் கே நிகட் பாண்டி ராஜாவும் கட்டிலா குளிக்கு அதுக்கு ஓர் விசால் தர்வாதா ஐசி பிரதா தி ஜப் கோய் சத்ரு ஆதா ஹுவா திகாய் படதா தா தோ துவார் பர் தைனாத் சிபாஹி ஢ோல் பஜா கர் ஹல்கே தேதா ஹுவா सावधान किया करता था। एक बार ऐसी घटना हुई कि शत्रु आ गए और शत्रु दल किले में प्रवेश कर गया और अभिमानी पांडे राजा को पराजय स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने अपना सर काट कर नदी जल में फेंक दिया। इस स्थान को नीलकंठन कसम कहा जाता है, जहाँ पर राजा का सिर यानी मुंडन गिरा, उस स्थल को मुंडन तो रही नाम दिया गया।
3: नाला नंबर मंगला के मेले और आर्च बोर्ड में कटिर पांच चंगा मार दो थे आगे ले रहा तो अंदर कोट के वासल अंदर आ रहा अंदर आ रहे लेकिन ये भी वंदा कोटा रिजन
0: मुंडन तुरई इसी नाम से तमिलनाडु में एक मुख्य टाइगर रिजर्व यानी शेरों का अभयारण्य भी है। ये ताम्रपर्णी नदी की घाटी में फैला हुआ है। मुंडन तुरई अभयारण्य की जानकारी दे रहे हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री भगवान सिंह।
4: द कलर कार्ड मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ 817 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट।
5: 1988 में भारत सरकार ने कलर कार्ड मुंडन तुरई को
6: शेरों का संग्रहालय बनाया। 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला घना जंगल पश्चिमी घाट के दक्षिण हिस्से का ही सिलसिला है। वहाँ सिर्फ शेर नहीं पाए जाते बल्कि बारह सिंघा, हिरण, चीता, नीलगाय और अनेक जानवर पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार किस्म के वृक्ष, जलाशय और पहाड़ी ढाल सुंदर नैसर्गिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ अभयारण्य नहीं है, एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन गया है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं। अभयारण्य के वृक्षों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है।
4: डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई पीक फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट।
0: भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग में स्थित इस सदा नीरा ताम्रपर्णी का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई जल के अलावा ताम्रपर्णी से यथेष्ट मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होने लगी है, जिससे उद्योग केंद्रों का विकास हुआ और तिरुनेलवेली जिले की कायापलट हो गई।
7: ताम्रपर्णी पर इस महत्वपूर्ण जल विद्युत योजना का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ?
0: पापनाशम, ये नाम है ताम्रपर्णी नदी के मुख्य जलप्रपात का, जहाँ पर ताम्रपर्णी की जलधारा पठारी भाग में घुमावदार रास्ता बनाकर चट्टानों से घिर कर बहती है। ताम्रपर्णी की जलधारा से पन बिजली प्राप्त करने के लिए हमारे इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। नदी की वेगवान धारा को रोककर एक विशाल जलाशय बनाने के लिए इस स्थान पर दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच ऊंचा बांध निर्मित किया गया। जलाशय के बन जाने से यहाँ के किसानों को 12 महीने खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, साथ ही ताम्रपर्णी में आने वाली बाढ़ का भय भी समाप्त हो गया। जल विद्युत उत्पादन करने वाली दक्षिण की पुरानी पनबिजली योजना पाप नाशम की जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी श्री आर वेल्लू।
8: ताम्रपर्णी
4: ஆற்றின் குறுக்கே 1944 ஒரு அணையை கட்டினார்கள். அந்த அணையின் நீரின் மட்டம் 143 அடியாகும். முழு கொள்ளளவு 5500.
8: सन 1944 में ताम्रपर्णी नदी की जलधारा पर पापनासम के निकट विशाल बांध का निर्माण किया गया, जिसके जलाशय में 5500 क्यूबिक फीट पानी रखने की क्षमता है। भरे होने पर इसकी गहराई 143 फीट की होती है। ताम्रपर्णी नदी पर दूसरा बांध भी यहीं खेसबलारू पर बनाया गया, जिसके जलाशय की क्षमता 1225 क्यूबिक फीट और गहराई 143 फीट की है।
4: 11 கால்வாய்கள் இருக்கின்றன, 8 அணைகளும் ஆங்காங்கே கட்டப்பட்டு சுமார் 73,000 ஏக்கர் கார் சாகுபடியிலும் 86,000 ஏக்கர்
8: இந்த பாந்தோ கே நிர்மாண கா முக்கிய உத்தேசிய கிசானோ கோ ठीक समय पर सिंचाई के लिए पानी देना, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन। और इस तरह महादेव शिव शंकर के वरदान के अनुसार ताम्रपर्णी पापनासम तथा शेषबलारू के बांधों के द्वारा विकास कार्यों में योगदान देकर अपनी महिमा का लाभ बिखेर रही है। आगे बढ़ने पर ताम्रपर्णी नदी की एक सहायिका मणिमुक्तारू की जलधारा आती है। इस पर भी 1958 में एक छोटा बांध तैयार किया गया है। इससे 22,000 एकड़ की रबी फसल वाले खेतों के लिए सिंचाई जल मिलता है। ताम्रपर्णी की जलधारा से विद्युत उत्पादन के अलावा पेयजल और सिंचाई जल वितरण का प्रबंध किया गया है। अब सिंचाई विभाग ने सिंचाई जल प्रबंध के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है। रबी की फसल के लिए जून की 1 तारीख और खरीफ के लिए 1 अक्टूबर को पानी छोड़ा जाता है।
0: वैज्ञानिकों तथा जल शास्त्रियों ने इसके जल के उपयोग का प्रयत्न जारी रखा है। अनेक छोटी बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं आरंभ की गई। ये सुखद तथ्य है कि छोटी होती हुई भी ताम्रपर्णी दक्षिण भारत में पहली नदी है जिसके सर्वाधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस इलाके में खुशहाली आई है और विकास का लाभ किसानों तथा ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। धान उपजाने वाले इस कृषि प्रधान क्षेत्र में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नदी ताम्रपर्णी के सहारे पूर्ण हुए विकास कार्यों की जानकारी अंबा समुद्रम केंद्र के प्रधान श्री डब्ल्यू विल्फ्रेड मैनुअल दे रहे हैं।
9: ताम्रपर्णी पासन பகுதியில் இரு போகங்களில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. முதல் போகத்தில் மே ஜூன் முதல் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரை
8: ताम्रपर्णी नदी का सिंचाई जल खेतों के लिए उपलब्ध होने लगा। इस सुविधा से पूरा लाभ उठाने के लिए यहाँ की मुख्य फसल धान की ओर ध्यान दिया गया। साल में यहाँ धान की 2 फसलें उगाई जाती हैं, पहली मई जून में तथा दूसरी सितंबर अक्टूबर में। क्षेत्र में चावल के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी खेती समस्याओं के निराकरण के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे अंबा समुद्रम नामक स्थान पर 1937 में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों, कीटाणुनाशकों तथा खाद के बारे में तरह तरह के प्रयोग कर धान की अच्छी किस्म प्राप्त की जाती है, जिससे चावल का उत्पादन बढ़ता रहे। अब तक इस अनुसंधान केंद्र से 18 प्रकार की नई किस्में प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1986 में विकसित अंबई 16 उत्तम कोटि की है, जिसे बहुत कम समय में ही धान की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। इसी के द्वारा 1989-90 में सिदम्बर नार जिले के कृषि मेले में अधिक चावल उपजाकर कादर साहब नामक एक कृषक ने प्रथम पुरस्कार जीता था।
9: தோகை அளவுகளுக்கு நடுத்தர எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட இந்த ரகம்

और नदी ताने तरनी पूरी दक्षिण की दिशा में बहती चली जाती है, जहाँ इसकी प्रिय सहायिका सितार मिलती है। संस्कृत साहित्य में इसकी जल धारा को सौंदर्यमय मानकर किन्ना के नाम से पुकारा गया है। हालांकि सितार नदी की कुल लंबाई केवल 62 किलोमीटर है, किंतु इस पर 18 छोटे छोटे बांध बना

0: ताम्रपर्णी और पुष्पारू के मध्य द्वाब में दूर दूर तक धान की हरी भरी फसलें लहलाती हैं। वेगवती नदी पुष्पारू पठारी प्रदेश से होती हुई कुचालम नामक क्षेत्र में पहुंचकर ताम्रपर्णी के मिलन के पहले कई झरनों का निर्माण करती है। इस स्थल को कुचालम जलप्रपात के नाम से लोकप्रियता मिली है। मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कुचालम के बारे में वहां के प्रशासकीय अधिकारी गुरु स्वामी के शब्दों में
1: कुचालम पेमेंगे அதுக்கு தமிழ்ல வார்த்தைகளே கிடையாதுங்க. அது குற்றாலத்துல இருந்து ஆண்டு அனுபவிச்சுதான் தெரியும்.
2: அது குற்றாலம் விசேஷத்தா பத்தானி ஹோதி கம்மி ஹோ ஜாயி குற்றாலம் ஆக்கர் இன் ஜர்னோ மே நகர் தா பிராகிருத்திக் சௌந்தர்ய கோக்கர் பஸ் கேனா கட்டாயிருந்தது அனுபவ கியா ஜா சக்தா குற்றாலம் மே அனேக் ஜர்னே குன்ன பேரு குற்றருவி பூனருவி ஐந்து அருவி குற்றாலம் மே ஏக் பார் ஆனே சே பார் பார் ஆனே கோ மன் கர்த்தா ஹை யஹி திரு குற்றால் நாதர் மந்திர் பக்தோ கா ஐசா விஸ்வாஸ் ஹை கி இன் ஜர்னோ மே ஸ்நான் கர்கே மந்திர் மே பூஜா கர்னே சே சப்பி மனோகாம்னாயே பூரி ஹோதி ஹை இஸ் காரண் பர்யடகோ கே அலாவா यहाँ धार्मिक यात्रियों की भी भीड़ होती है और पूजा अर्चना के स्वर गूंजते
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताम्रपर्णी का जल भी गंगा जल के समान पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है क्योंकि इसका आदि स्रोत शिव जी का कमंडल है। किंतु युगों युगों से बहती आ रही सरिता ताम्रपर्णी का जल मनुष्यों के द्वारा अवांछित उपयोग किए जाने के कारण अब दूषित होने लगा है। ताम्रपर्णी जल में बढ़ती हुई गंदगी से लोगों में चिंता होने लगी। इसके जल को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिसकी जानकारी तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिरुनेल वेली शाखा के इंजीनियर श्री के कार्तिकेयन दे रहे हैं।
3: சுமார் 120 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த தாமிரபரணி நதியில் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் உற்பத்தி கழிவுநீரும் தொழிலாளர்களின் மூலமாக ஏற்படும்
4: தாமிரபரணி நதி के जल के दूषित होने के मुख्य कारणों में इसके तटों पर स्थापित कारखानों और मिलों से आने वाला गंदा पानी है। मजदूरों तथा आसपास बसे लोगों द्वारा भी नदी में गंदगी फैलाई जाती है। सुबंदरनार जिले में स्थित रासायनिक और अन्य छोटे कारखानों से भी गंदगी नदी में आती है। ताम्रपर्णी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए उन कारखानों के अधिकारियों को समझाया जाता है कि जल शुद्ध करने वाले यंत्रों को ठीक रखें और नदी में गंदगी कम बहाएं। इनके अलावा आसपास के लोगों को जागरूक और सावधान किया जाता है। जनसंचार के साधनों द्वारा भी संदेश दिया जाता है कि नदी में गंदगी ना फेंकें। दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं।
3: मुझे अरुत

घाट के पोदुगई पर्वत से निकलकर मचलती हुई ताम्रपर्णी करीब 130 किलोमीटर की राह तय कर तिरुनेलवेली क्षेत्र को सस्त श्यामल बनाती हुई चौढ़ा का रूप धारण करती है।

में पहुंचती है बंगाल की खाड़ी के नजदीक तिरुवई कुंटम। तिरुवई कुंटम ये नाम है उस स्थान का जहाँ से ताम्रपर्णी की जलधारा सागर के अनंत अंक में समाहित होने को आकुल होती है और अंत में ताम्रपर्णी

नाव मझधार में आने आधी उठत प्रचंड आधी उठता।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम

0: सर्वेश्वर शिव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव शंकर की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्रदेव को सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का पालन और प्राणियों की मुक्ति के तीनों काम देकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता के 15वें अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: हे शौनक, परमपिता ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने में उन्हीं की इच्छा और संकल्प से तीनों लोकों में चर और अचर तत्वों की रचना हुई।
2: हे महामुनि सूत जी, आप कृपा कर मुझे बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की।
1: शौनक जी, यही प्रश्न परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से किया था। मैं तुम्हें वही प्रसंग संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक दिन ब्रह्मलोक में महर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
3: नारायण नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूँ।
4: देवर्षि नारद, कहाँ कहाँ विचरण करके आ रहे हैं? लगता है आपके मन में कोई बड़ी जिज्ञासा है जिसके कारण आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है।
3: हे परम पिता, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि आपने सृष्टि का आरंभ कैसे किया। ये कथा संसार के अनेक प्राणियों को ज्ञात नहीं है।
4: आपकी जिज्ञासा संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाली है। अतः मैं आपको उसके संबंध में संक्षिप्त में बताता हूं। भगवान महादेव ने जब मुझे और भगवान विष्णु तथा रुद्र को सृष्टि के तीनों कामों अर्थात उत्पत्ति, संचालन और विनाश का दायित्व सौंपा तो वे मुझे आदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी अपने वैकुंठ लोक जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, हे विष्णु भगवान, महादेव ने मुझे एक कठिन काम सौंपा है, ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। देव, मैं नहीं जानता कि सृष्टि के आरंभ के लिए मैं कौन सा यत्न करूं।
5: हे ब्रह्मा, आप ब्रह्मांड के सभी 24 तत्वों का साथ ग्रहण कीजिए जिससे सृष्टि के संचालन में विविधता और तरह तरह की क्रियाओं का समावेश हो सके। इसमें केवल

0: गुण ही नहीं बल्कि तमोगुण और रजोगुण भी होने चाहिए, तभी सृष्टि के सभी जीवों के कामकाज पर भांति भांति की भावनाओं का संचार हो सकेगा।
1: हे विष्णु, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं ऐसा ही करता हूं।
0: हे ब्रह्मा, अब मैं वैकुंठ जाता हूं, आवश्यकता होने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा।
1: अपने आप से पूरे ब्रह्मांड में केवल जल ही जल है, इसी जल से मुझे सृष्टि की रचना करनी है। हे शिव, इस जल के द्वारा मैं आपका स्मरण करता हूं, सृष्टि रचने का संकल्प लेता हूं। यह विशाल जल से भरी अंजलि मैं आपको समर्पित करता हूं।

0: मैं अभी अभी जन्मे भगवान शिव की शरण लेता हूं। सत्य जाग को मेरा प्रणाम है। इसी जगत में आप मेरा पराभव न करें। आप सृष्टि के उद्भव कर्ता को मेरा प्रणाम। भगवान शंकर की कृपा से मेरी अंजुरी के जल से यह विशाल अंडा पैदा हुआ है। यही इस सृष्टि का मूल कारक होगा। परंतु ये क्या? ये तो केवल जड़ है। चेतना के अभाव में सृष्टि कैसे होगी? इस अंड में चेतना लाने के लिए मैं क्या करूं? हे भगवान विष्णु, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। हे ब्रह्मा, मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हे महाभाग, आपकी सम्मति के अनुसार मैंने 24 तत्वों से बना ये अंड पैदा किया है, परंतु इसमें किसी प्रकार की चेतना के चिन्ह दिखाई नहीं देते। आपको भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन और पालन का दायित्व सौंपा है, इसलिए प्रभो आप स्वयं इस अंड में प्रवेश कीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देव, मैं भूमि को सब ओर से घेर कर इस विशाल अंड में स्वयं प्रवेश करता हूं।
0: इस अंड में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब सृष्टि के अलग अलग तरह के कार्यों के लिए तमोगुण आवश्यक है। हे शिव, पाप पूर्ण तमोगुण, सृष्टि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्या पंचम जागृति। सृष्टि की रचना का पहला चरण पूर्ण हुआ।

0: तो केवल तमोगुण ही है, पातमय। इनसे सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ये रहा तो तिर्या रहा है, यानी पशु पक्षी जो तिरछे चलते हैं, इससे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? हे शिव, तमो गुण के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए जिससे सृष्टि के प्राणियों का उद्धार हो। हां, सतोगुण, सतोगुण, सतोगुण। हाँ, यही है सात्विक सर्ग का उदय, ये देव सर्ग है। परंतु परंतु पुरुषार्थ साधन के लिए तो ये भी पर्याप्त नहीं है। तमोगुण और सतोगुण के अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए। हे शिव शंभो, रजोगुण, रजोगुण, रजोगुण। यही रजोगुण संसार के प्राणियों के लिए पुरुषार्थ का साधन बनेंगे। एक ओर तमोगुण, दूसरी ओर सतोगुण और मध्य में रजोगुण। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होंगे जो पुरुषार्थ साधन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। हे शिव, आपकी आज्ञा से मैंने चर अचर, स्थावर जंगम और कर्म के अधिकारी मनुष्यों की रचना का संकल्प पूर्ण किया। किंतु अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। संसार के प्राणी का जन्म और मृत्यु कैसे होगी? मैं अपने चारों मानस पुत्रों सनक आदि ऋषियों को बुलाता हूं।
1: हे परमपिता, आपका क्या आदेश है?
0: हे पुत्रों, भगवान शिव की आज्ञा से मैंने सृष्टि में चर अचर, जड़ चेतन, स्थावर जंगम तथ्यों का उदय कर दिया है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए जीवों की उत्पत्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी सहायता करो।
1: हे परमपिता, हम तो वैरागी हैं, हम संतान उत्पन्न करने का कार्य कैसे कर सकते हैं?
0: परंतु पुत्र, सृष्टि की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है।
1: हे पिता, हम अपना उत्तम व्रत नहीं छोड़ सकते।
0: मैं कहता हूं ये मेरा आदेश है, तुम चारों मेरी आज्ञा का पालन करो।
1: क्षमा देव, ये असंभव है, असंभव।
0: मेरे ही मानस पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, ये मैं नहीं सह सकता। तुम्हें मेरे क्रोध का ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारा भयंकर अनिष्ट कर सकता हूं। हे भगवान विष्णु, मेरी सहायता कीजिए, मेरे मानस पुत्र मेरा आदेश पालन करने से मना कर रहे हैं, ये मेरे संकल्प की पूर्ति में बाधक हो रहे हैं।
2: हे ब्रह्मा, क्रोध को छोड़ दीजिए, ये चारों आपके मानस पुत्र हैं, इन्होंने आप ही के आदेश से वैराग्य धारण किया है, मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं है।
0: तो फिर मैं क्या करूं प्रभु? सृष्टि की रचना का मेरा काम अधूरा रह जाएगा।
2: हे ब्रह्मा, आप सर्वेश्वर शिव की शरण में जाएं, वे ही आपको इस कठिन समय में राह सुझाएंगे।

हे शिव शंभु, आप ही रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं। सतो गुण से संपन्न होकर सातों भवनों का धारण पोषण करते हैं। तमो गुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने सिद्ध स्वरूप में स्थिर रहते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप पूर्ण आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ही सृष्टि के काल में मुझ ब्रह्म, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का नाम धारण करते हैं। आप सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। आपको प्रणाम।

0: सृष्टि के आदि कर्ता ब्रह्मा, मैं सदाशिव हूं, आपका कौन सा काम पूरा कर सकता हूं?
1: हे महादेव, आपका ये रूप मुझे चकित कर रहा है। आपका आधा शरीर पुरुष का और आधा नारी का है, ये क्या रहस्य प्रभु?
0: हे ब्रह्मा, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अर्ध नारीश्वर रूप में प्रकट हुआ हूं। संसार की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है।
1: देव, कृपा पूर्वक आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों।
0: ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करता, क्योंकि वे अपने पाप और पुण्य कर्मों के अधीन होकर सुख और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार ही करूंगा।
1: हे महेश्वर, तो क्या जीवों की सृष्टि का काम भी मुझे ही करना होगा?
0: प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि आप ही करेंगे। मेरी आज्ञा से ये काम करने के कारण माया आपको बांध नहीं सकेगी।
2: नारायण नारायण।
3: हे परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि के आरंभ की कथा तो अत्यंत मनोहारी है, इसके बाद आपने क्या किया?
1: हे पुत्र, इसके बाद मैंने सृष्टि के पांच तत्वों को मिलाकर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। इन्हीं के मेल जोल से पर्वतों, समुद्रों और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया। कला से लेकर काल तक के अलग अलग भागों की रचना की।
3: हे परम पिता, इसके बाद आपने संसार में पुरुषों की सृष्टि कैसे की?
1: नारद, सबसे पहले मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को,

0: सिर से अंगिरा को, वशिष्ठ को अपान से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राणों से, तक्ष को गोद से, तुम्ब को छाया से, कर्दम मुनि को संकल्प से, तथा धर्म से तुमको उत्पन्न किया।
1: हे परम पिता, क्या इन्हीं से देवताओं और असुरों की सृष्टि हुई?
0: हाँ नारद, भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में बांटकर आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री हो गया। उस पुरुष का नाम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री का नाम सतरूपा से। मनु ने सतरूपा के गर्भ से प्रियावर्त और उत्तानपान नामक दो पुत्र पैदा किए और तीन कन्याएं, जिनके नाम आहुति, देव आहुति, प्रसूति थे। आहुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, देवाहुति का कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ। उनकी संतान परंपराएं ही सारे जगत में व्याप्त हैं।
1: भगवान महादेव शंकर कैलाश पर कब गए?
0: नारद, ये कथा बहुत दिलचस्प है। कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि बहुत ही दुराचारी तथा भोगी था। पिता के लाख समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पिता यज्ञदत्त ने गुणनिधि को निष्कासित कर दिया। गुणनिधि एक अन्य नगर में चला गया। वहां के शिव मंदिर में बहुत चढ़ावा आता था। गुणनिधि के मन में लालच आ गया और उसने चढ़ावा चुरा लिया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे लेने जब यमदूत आए तो
2: गुणनिधि, तूने जीवन भर दुराचार किया है। यम की आज्ञा से हम तुझे यमलोक ले जाते हैं। तुझे नरक की घोर यात्राएं सहनी पड़ेंगी।
3: हे यमदूत, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नरक की यातना से बचा लो। यमदूत
4: ठहरो। महाराज यम के दूतों, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते।
2: नहीं ले जा सकते? किंतु क्यों? इसने तो जीवन भर अनेक कुकर्म किए हैं। महाराज यम की आज्ञा है कि
4: किंतु महादेव शिव की आज्ञा है कि गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाया जाए।
2: किंतु इसने तो कोई पुण्य का काम नहीं किया।
4: किया है। इसने अंधकार ग्रस्त शिव मंदिर में दीप जलाया है।
3: दीप? किंतु वो तो मेरा वस्त्र था।
4: हाँ, वही भगवान शिव के लिए वही दीपदान था।
3: हाँ?
4: सर्वेश्वर शिव की कृपा से तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए। आओ गुणनिधि, शिवलोक चले।
3: हाँ?
4: आओ।
3: जय भोले, जय भोलेनाथ।
4: आओ आओ गुणनिधि, महादेव शंकर विराजमान है।
3: हे करुणा निदान, मैं आपको बार बार बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने जीवन भर अनेक पाप किए। मुझे सचमुच पश्चाताप है। मुझे क्षमा करें दे।
5: गुणनिधि,
3: प्रभु
5: तुमने मेरे मंदिर में ज्योति जलाई है, इसलिए तुम अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे।
3: प्रभु,
5: तुम्हारा नाम राजा दम होगा और तुम्हें सत्कर्मों के लिए एक और अवसर मिलेगा।
3: हे प्रभु, हे महादेव, आपकी जय हो। आप सचमुच भोले भंडारी हैं। प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ।
1: ये

0: तेज है, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ धरती पर उतर आए हों।
1: हे अलकापति, मैं साक्षात शिव हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। बोलो, तुम्हारा मनोरथ क्या है?
0: हे महादेव,

0: हो, आपका अलौकिक रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु। लेकिन महादेव के साथ ये कौन है? अद्भुत सुंदरी, भगवान शिव के इतने निकट, इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है?
1: महादेव, ये तपस्वी लगातार मेरी ओर देखकर क्या बड़बड़ा रहा है? इसकी दृष्टि मुझे असहनीय है। मैं इसके एक नेत्र की ज्योति हर लेती हूँ।
0: उमा, ये क्या किया? ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख रहा था। बस प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम्हें वर देता हूँ कि तुम संसार की सारी संपत्तियों के स्वामी और सबके लिए धन के दाता बनो। आओ पुत्र, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करो।
2: महादेवी उमा, मुझ पर कृपा कीजिए।
1: पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बाई आंख तो ज्योतिहीन हो गई है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव में तुम्हारी भक्ति बनी रहे।
2: हे उमापति शंकर, मेरी तपस्या सफल हुई।

0: स्वामी, आपकी लीला का रहस्य कोई नहीं जानता। आपने कुबेर को वर देकर उसे संसार की सारी निधियों का स्वामी बनाकर अद्भुत कर्म किया है।
1: देवी, मेरी इच्छा है कि कुबेर के साथ हम कैलाश पर्वत पर ही निवास करें। ये कैलाश पर्वत तीनों लोकों के सुख से भी अधिक सुखदायी और मनोहारी होगा।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
2: सूत जी, महादेव की कैलाश पर जाने की कथा सुनकर मन आनंद से भर गया। अब आप कृपा कर आगे की कथा कहें।
3: हे शौनक, अब कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग और दक्ष की तपस्या का वर्णन अगली बार बताएंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप रुद्र संहिता के प्रथम अंक की कथा सुन रहे थे। अगले प्रकरण में भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक नारी के प्रकट होने की कथा का वर्णन करेंगे।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

mano vayo, antes quiero cagada, mano vayo, apanito.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।